0: कह दो पड़ोसियों से
1: क्या?
0: झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।
1: मम्मी को तो डैडी